0: मुझको भी
1: सैन्य समुदाय में
2: मिलाएं भरी
1: ऑन एयर
2: ऐप में
1: अनि स्मार्ट स्पीकर में भन्नुहोस्
3: प्ले बीएफबीएस
2: यू बीएफबीएस गोरखा रेडियो
3: गोरखा।